कनकभूषणाय नमः ॐ खज्जोताय नमः ॐ लोलिताखिल दैत्याय नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ आर्यशरण्याय

अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणान अस्माकं भोज्य विधातनो नाम प्रतनाजिदगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमास्तदस्तात् सनः पुरुषदधि दुर्गा निविस्वाक्षामद्देव अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च गमेज्यो अध्वरेषु सना च होदानज्ञ सहच्चे।